0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:10 है स्टूडियो की घड़ी का समय। संगे आप शर्मिष्ठा के और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम का सिलसिला हो चुका है और भीगा भीगा मौसम है तो ऐसे में रिमझिम वाले गीत को सुनने और सुनवाने में आखिर क्या ही हर्ज है ना। और ऐसे मौसम में इस तरीके के गीत को सुनने का एक अलग ही मजा, एक अलग ही आनंद आता है। और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडी दोस्त शर्मिषा के साथ। और आपकी रेडी दोस्त ये आशा करती है आप सभी के लिए कि हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन को आप जोरदार तरीके से आपने शुरू कर दिया होगा। इस दिन की शुरुआत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से आपकी हुई होगी। और इसी के साथ चलिए नॉनस्टॉप गपशप करते हैं इसी कार्यक्रम में और गपशप का सिलसिला शुरू करें। तो आखिर सबसे पहले किस विषय को लेकर करें बात भाई? अच्छी सी खबर है, गुड न्यूज़ है। और ये जो गुड न्यूज़ है ये हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है तो फिर देश के साथ अच्छी खबर गुड न्यूज़ जब जुड़ी हो तो फिर किसी और बात को सबसे पहले भला हम कैसे ही करें, है ना। तो चलिए, खेल की दुनिया से जुड़ी हुई है ये अच्छी खबर। और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो महिला खिलाड़ियों ने देश का नाम फिर एक बार रोशन किया है। तो चलिए, वो महिला खिलाड़ी कौन है और किस खेल से जुड़ी हुई हैं और आखिर ये खुशखबरी कौन सी है? पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है और जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं विश्व चैंपियन, जिनका नाम है पीवी सिंधु। और फिर एक बार पीवी सिंधु ने अपने देश का नाम रोशन कर दिया है और देश के लोगों को फिर एक बार गर्व है हमारी इन जानी मानी खिलाड़ी जो कि जापान की धरती पर फिर एक बार हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है और वे ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अका ने यामागुची को 21-17 से हरा दिया है और ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं और उन्हें पहली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल जीता था और वे 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। इसके अलावा एक और महिला खिलाड़ी भी है जिन्होंने अपने देश का और देश के लोगों का नाम रोशन किया और भारतीय पहलवान काजल ठोचक ने इन्होंने भी खेल की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। तो भाई, ये तो है खुशखबरी जो कि जुड़ी हुई है हमारे देश के साथ। और महिला खिलाड़ियों ने ये स्वर्ण अवसर देश को, देश के लोगों को दिया है कि देश का नाम विदेशी धरती पर फिर एक बार चमका दिया है। तो ये तो काफ़ी खुशी की बात है और महिलाओं के ज़रिए ये खुशी दोबारा देश को, देश के लोगों को मिली है। लेकिन कई सालों पहले, जी हाँ कई सालों पहले, आज जब हम महिलाओं से जुड़ी खुशी को बांट रहे हैं सबके साथ, इसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कई सालों पहले महिलाओं की खुशी, तो छोड़िए महिलाओं का किसी भी क्षेत्र में योगदान इतना बड़ा नहीं होता था कि जिसे लेकर बात किया जाए। जी हाँ, बात कर रही हूँ आज के खास दिन को लेकर। वैसे तो इंटरनेशनल मून डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है और

नील आर्मस्ट्रॉम के चांद पर पहले कदम को रखने की खुशी के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन ये जो पूरा जो सिस्टम है जिसकी वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ ही चांद पर पहला कदम रखने में कामयाब हुए थे, इसके पीछे भी महिलाओं का योगदान था। जी हाँ, महिलाओं ने भी अपनी पूरी क्षमता लगाई थी इस पूरे मिशन को सफल बनाने में, लेकिन उस वक्त महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। महिलाओं का योगदान इस पूरे सक्सेसफुल इवेंट को लेकर कहीं भी महिलाओं के योगदान को लेकर बात नहीं हुई थी, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं कामयाब हो रही हैं और उनकी कामयाबी को लेकर पूरी दुनिया में बात होती है, चर्चा होती है और साथ ही साथ खुशियां भी मनाई जाती है। तो आज के खास दिन को लेकर भी करूंगी बात और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जुड़ी ये जो दुनिया भर की खुशी है। जी हाँ, चंद्रमा में पहली बार अपने पैरों को रखने की जो खुशी है, ये जो पूरा मिशन है, इस मिशन में आखिर कितने लोग जुड़े हुए थे, क्या ये संभव है कि इतना बड़ा मिशन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी दो साथियों तक ही सीमित है? नहीं ना, ये कभी भी संभव नहीं कि इतना बड़ा मिशन सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों के जरिए कामयाब हो जाए, बल्कि उनके पीछे थे बहुत से लोग। जी हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे थे। तो आखिर कौन लोग थे वो, इसके अलावा महिलाओं का आखिर इस क्षेत्र में क्या योगदान था, ये सारी बातें होंगी इसी कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले रुख करेंगे एक फिल्मी गीत की और उसके बाद बातें होंगी बहुत सी, साथ ही साथ एक से बढ़कर एक गीत भी सुनवाऊंगी इसी कार्यक्रम में। तो जुड़े रहना है आपने, पूरे इस कार्यक्रम को सुनना है, मैं और ये कार्यक्रम आपके साथ है पूरे 11 बजे तक। तब तक के लिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुनिए ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।
2: दस बजकर 23 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और इस वक्त आप सुन रहे हैं शर्मिष्ठा को। कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप। तो चलिए फिलहाल आज के दिन को लेकर कर लेते हैं बात। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। ये दिन मानव इतिहास में सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक अपोलो 11 मिशन की याद दिलाता है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये दिन देश के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और इसके अलावा चंद्रयान 3 जैसे सफल अभियानों के माध्यम से विश्व अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विशेष रूप से चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बनाया, जिससे भारतीय वैज्ञानिक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दस बजकर 31 मिनट संगे आप शर्मिशा के और नॉनस्टॉप कार्यक्रम का सिलसिला जारी है और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए इस सिलसिले को यानी कि इस कार्यक्रम में नॉनस्टॉप गपशप के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त बात करूँगी जिसके बारे में मैं बस थोड़ी ही देर पहले जिक्र कर रही थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ उनके बाकी दो साथियों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का श्रेय क्या सिर्फ उन तीनों का था जिन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे? शायद नहीं, बल्कि शायद मैं क्यों कह रही हूँ, बल्कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इतने बड़े मिशन को कामयाब करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का योगदान था, बल्कि इसके पीछे 4 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और नासा के अनुमान के अनुसार इस अपोलो मिशन से करीब 4 लाख लोग जुड़े थे। इन लोगों की लिस्ट में अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर मिशन कंट्रोलर, ठेकेदार, कैटरर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नर्स, डॉक्टर, गणितज्ञ और प्रोग्रामर तक सभी शामिल थे। ये सभी लोग केवल एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग को संचालित कर रहे थे। जब ये मिशन चल रहा था तब 20 से 30 लोगों की टीम हर सेकेंड सक्रिय रहती थी। नासा के मिशन कंट्रोलर को पूरी दुनिया में मौजूद ग्राउंड स्टेशन से भी संपर्क रखना पड़ता था और इसीलिए इन 4 लाख से ज़्यादा जो लोग इस मिशन के साथ जुड़े हुए थे, इन सभी से जुड़ा हुआ है ये खुशी का दिन जिसे आज के दिन इंटरनेशनल मून डे के तौर पर हम मना रहे हैं और इन सभी के सक्रिय योगदान से ही ये जो मिशन है ये सफल हो पाया। अच्छा, इसके अलावा मैं बात कर रही थी लड़कियों के, महिलाओं के भूमिका को लेकर जो कि जुड़ा हुआ था इस मिशन को लेकर। तो अपोलो के इस मिशन में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी लेकिन पुरुषों के मुकाबले उन्हें इतनी सफलता या फिर उनका नाम इतना नहीं लिया गया। अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी लेकिन पुरुषों के समान ना तो उन्हें यश मिला और ना ही उन्हें क्रेडिट दिया गया। महिलाओं ने इस मिशन के दौरान सूट बनाने वाली यानी कि किसी महिला ने सूट को तैयार किया या फिर गणितज्ञ के तौर पर एक अहम रोल उन्होंने निभाया था। महिलाओं के लिए अलग कमरों या फिर बाथरूम तक की व्यवस्था भी नहीं थी उस दौरान और इससे ये पता चलता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम उस वक्त महिलाओं की भागीदारी के लिए शायद तैयार नहीं था। लेकिन आज वो वक्त नहीं है, आज वो समय नहीं है, आज महिलाओं की, लड़कियों की हर एक कामयाबी को पूरा देश, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करता है और चाहे देश की बात कर लीजिए, चाहे

दुनिया की बात कर लीजिए, अगर कोई भी खुशी महिलाओं से जुड़ी होती है तो उसे आज हम हर एक से बांटते हैं। और ये काफ़ी गर्व की बात है कि महिलाएं भी देश की कामयाबी में, देश को, देश का नाम रोशन करने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। वैसे तो योगदान पहले भी दिया जाता था महिलाओं के ज़रिए, लेकिन उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिलती थी जितना कि आज महिलाओं के नाम खुशी हर तरह की, जैसे कि आज मैं खेल के बारे में बात कर रही थी, खेल की दुनिया में महिलाओं ने देश का नाम विदेशी धरती पर रोशन किया और हर देशवासी को गर्व है इन महिला खिलाड़ियों पर जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया। तो चलिए रुख करते हैं अगले फिल्मी गीत की ओर। और वैसे भी नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम में बातें होंगी और भी स्पेशल वाले बर्थडे को लेकर भी तो बात करूंगी इसी कार्यक्रम में, है ना। तो चलिए फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की।

अब जल्दी से बात कर लेते हैं हैप्पी वाले बर्थडे को लेकर, और आपको बताऊं कि बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन कौन से सितारे अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को लेकर। नसीरुद्दीन शाह जाने माने बॉलीवुड सिनेमा के दिग्गज और बहुमुखी अभिनेता हैं। 20 जुलाई 1950 को जन्मे शाह ने पैरेलल और मुख्य धारा दोनों तरह के सिनेमा में अपनी शानदार अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी है। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वॉल्पी कप भी मिल चुका है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के अलावा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। उन्होंने 1970 के दशक में मध्य में श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने समानांतर या फिर पैरेलल सिनेमा में आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला और अर्थ सत्य जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। शाह ने हम 5 जो कि आई थी 1980 में, इस फिल्म से मुख्य धारा के बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में मासूम, जाने भी दो यारों के अलावा वेडनेसडे शामिल है। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार दिया गया। साल 1980, उसके बाद 84 और उसके बाद साल 2006 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नसीरुद्दीन शाह ने अपने नाम किया। इसके अलावा 1987 में पद्मश्री के अलावा 2003 में पद्म भूषण से भी नसीरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक और अभिनेत्री हैं जो मनाती है बॉलीवुड की दुनिया में अपना हैप्पी वाला बर्थडे, और खूबसूरत एंड बोल्ड अभिनेत्री का नाम है ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह जाने माने बॉलीवुड अभिनेत्री और ट्रेंड डांसर हैं, जिन्हें मुख्य रूप से ऑस्कर नामांकित फिल्म लगान और मुन्ना भाई MBBS जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है। जन्म हुआ 1980 दिल्ली में। टेलीविजन से उनके अभिनय के करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकप्रिय सीरियल अमानत, जो कि साल 1997 में आती थी, उस सीरियल यानी कि टीवी के छोटे पर्दे पर ग्रेसी सिंह को सबसे पहले देखा गया था, और इसी से उनके अभिनय के करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की अगर बात करें तो उन्होंने आमिर खान की फिल्म लगान में गौरी का किरदार निभाकर बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने मुन्ना भाई MBBS जिसमें संजय दत्त के साथ डॉक्टर सुमन का किरदार ग्रेसी सिंह ने निभाया था। इसके अलावा साल 2000

2003 में आई थी गंगाजल, और उसी साल अरमान जैसी फिल्म में हमने ग्रेसी सिंह के बेहतरीन अभिनय को देखा था। तो चलिए, अभिनेत्री ग्रेसी सिंह के अलावा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह मनाते हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे, और सभी चाहने वालों की ओर से आज बर्थडे बॉय एवं बर्थडे गर्ल को अपने जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत, फिलहाल जगजीत सिंह की आवाज़ में एक गीत आप सभी सुनने वालों के लिए फिल्म सरफरोश से। सरफरोश एक ऐसी फिल्म जिसमें नसीरुद्दीन शाह के बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था, और इसके अलावा और भी बहुत से नामी अभिनेता इस फिल्म में हमें दिखे थे। तो चलिए रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर, फिलहाल जगजीत सिंह।

चलते चलते आज के नुस्खे को लेकर कर लेते हैं बात। वैसे तो बरसात का मौसम है और कभी बरसात तो कभी ठंडी के अलावा कभी गर्मी भी हम महसूस कर रहे हैं इसी मौसम में। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जवाब जो दे उठता है वो है हमारा गला, और गला जो है सुबह उठकर ही जवाब दे देता है और ये कहने लगता है कि बस हमसे अब और नहीं होगा। ये जो ज़ुल्म सितम है, कभी गर्मी तो कभी ठंडी, ये हमसे अब और सहन नहीं जा रहा। इसीलिए अब हमने तय किया है कि हम आज के लिए हम नहीं उठेंगे बल्कि हम बैठे रहेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी गर्मी और कभी ठंडी के ज़ुल्म सितम से हमारा जो गला है वो सुबह उठकर ही बैठ जाता है। यानी कि हम उठते हैं लेकिन हमारा जो गला है, हमारे गले की जो आवाज़ है वो बैठी बैठी सी रहती है और ये पूरे दिन की समस्या बनकर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ऐसे में अगर आप इस परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, तो आपको करना है एक छोटा सा उपाय, बल्कि नुस्खा है। और ये नुस्खा ना ही मेरा है, ना ही आज का नुस्खा है, बल्कि सदियों से दादी और नानी के समय से चला आ रहा है और आते आते पहुंच चुका है आज के इस समय में भी। लोग इस नुस्खे को अपनाते हैं और वाकई में अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो आपका जो गला है वो फिर से उठकर खड़ा हो सकता है और सुरीली आवाज़ के आप मालिक दोबारा बन सकते हैं। तो चलिए, वो नुस्खा आखिर क्या है और किस तरीके से करना है, बड़ा ही आसान है। जी हाँ, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो गुनगुने गर्म पानी, जी हाँ गुनगुना पानी है तो गर्म तो होगा ही, लेकिन हल्का गरम, जिसमें आपने डालना है एक चुटकी नमक। और एक चुटकी नमक के साथ गुनगुने पानी को आप लेंगे और आपने गरारे करने हैं, और इस चीज़ को आपने दिन में 2 से 3 बार करना है। और इस तरीके से आप अगर इस नुस्खे को अपनाते हैं, ये अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो गला है काफ़ी आराम पाएगा और सुरीली आवाज़ बिल्कुल ही निकलेगी आपके गले से। तो ये एक प्यारा सा छोटा सा नुस्खा था जो कि गले की परेशानी से काफ़ी हद तक आराम देता है। लेकिन फिलहाल दिलो दिमाग को आराम देने के लिए एक प्यारा सा गीत मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ। तो चलिए, फिलहाल श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

इसी के साथ आज की ये कार्यक्रम होता है यहीं पर समाप्त। संग थे आप आपकी रेडियो शर्मिष्ठा के और सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और नॉनस्टॉप गपशप का अगला और आखिरी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए चिन्मय और शिखर की आवाज़ में। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिए इजाजत। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मिल रही हूँ, बहुत जल्द समय रहेगा 11:10 लेकर आऊँगी कार्यक्रम लो आ गए उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने दोबारा ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा 107 FM रेनबो के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: And before we start off, here is a weather warning. Light to moderate thunderstorm and lightning accompanied with light to moderate rain and gusty wind with speed 30 to 40 kilometers per hour. Very likely to affect over some parts of North 24 Parganas, South 24 Parganas, Nadia districts during the next 2 to 3 hours from 12:35 this afternoon. If you're somewhere nearby, it must have really been started.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सबका FM रेनबो पर, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का चैनिका के साथ। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 3:08:45 और ये जो समय है ये एकदम हमने तय कर रखा है कि आपके साथ केवल हम उस माँ की बात करेंगे जो हमारी पूरे वजूद को घेरे हुए है। कौन है वो? जी वो है सिनेमा। सिनेमा की बातें करने हम आते हैं रोजाना आपके साथ ओनली ऑन तीन का तड़का 3:02 पर रोजाना FM रेनबो पर। तो फिल्मी बातें तो होंगी लेकिन सबसे पहले तो खैरियत पूछने वाली बात है अभी फिलहाल सलमान खान की, क्योंकि उन्होंने कुछ एक तस्वीरें साझा की सोशल मीडिया पर और उन्हें देखकर जो उनके जो मुरीद हैं, फैन हैं, वो घबरा गए, परेशान हो गए और उन्होंने पूछा कि वो ठीक तो है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली किसी सवाल का जवाब था। अपनी तस्वीरें उन्होंने साझा की सलमान खान ने और उन्होंने लिखा, पूछा एक्चुअली अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। अब इस तरह का सवाल अगर कोई पूछे, खैरियत पूछे आपकी, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी कि आप पलट कर पूछें उनकी खैरियत। लेकिन यहाँ पर उनकी तस्वीरों ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया। देर रात उन्होंने ये जो फोटोज़ हैं ये शेयर की और कैप्शन क्यों इस तरह से उन्होंने अचानक से तबीयत के बारे में क्यों पूछा, लोग ऐसा सोच रहे थे। और वैसे उन्होंने स्टाइलिश सी पिक्चर्स ही दी हैं जहाँ पर उन्होंने एक काउबॉय हैट पहना है। वैसे थोड़े से वो पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा में थोड़े से दुबले ज़रूर नज़र आए। अब लोगों का क्या है, कयास तो लगाते ही रहते हैं और जब आपकी किसी बेहद पसंदीदा अभिनेता की बात हो तो मन में ऐसी चिंता आ सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो सादे से लुक में काउबॉय हैट पहने सलमान खान की तबीयत लोग पूछने लगे और उन्होंने कहा कि हम तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आप भी ठीक से रहें तो हम भी अच्छे ही रहेंगे। अब हैरान हैं लोग, परेशान हैं, लेकिन चिंता मत जताइए, हो सकता है कि ये एक फेज़ है। हम सब कभी न कभी जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं और ऐसा ही हमारे जो प्रिय सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ भी होता है। वैसे एक और यहाँ पर मैं बात ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि जिस फिल्म की बात हम बहुत बहुत बहुत महीनों से सुनते आ रहे हैं कि वो रिलीज़ होगी, अब रिलीज़ होगी, तब रिलीज़ होगी, वो फिल्म तो रिलीज़ हो नहीं रही। फिल्म का जो है वो नाम बदल गया, मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस ये नाम अब फिलहाल रखा गया है इस फिल्म का। अपूर्वा लखिया डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, बहुत दिनों बाद उनकी एक फिल्म हम देखने वाले थे, पहले ये जनवरी में फिर अप्रैल में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। अब नए रिलीज़ का इंतज़ार हम सबको है। इस बीच बस धैर्य धरिए सब और जब वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर तो हमें ज़रूर ये बात जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे और यूं ही खूबसूरत खूबसूरत फिल्में हमारे लिए तोहफे में लाते रहेंगे। फिलहाल तो बजरंगी भाईजान का एक गीत आप सबके लिए ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जा रही है तीन का तड़का चयनिका के साथ, आप सुन रहे हैं फिल्म रेनबो कोलकाता। बजरंगी भाईजान का मैंने आपको गाना सुनवाया और एक बड़े ही कमाल के किरदार में इस फिल्म में हमने देखा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। और हाल ही में उन्होंने अपनी एक दूसरी फिल्म के बारे में एक बड़ी ही मज़ेदार बात कही। उन्होंने बताया अपने एक इंटरव्यू में कि वो कटरीना कैफ के सामने डायलॉग भूल गए थे और ये बोले वो कि लोग जो हैं वो गलतियां पसंद करते हैं। अब भला ये क्या बात हुई। ये बहुत ही मज़ेदार एक किस्सा है उन्होंने जो बताया अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि एक बार शूटिंग चल रही थी और वो डायलॉग जब बोल रहे थे तो वो भूल गए। बहुत सारी पेजेस में ये डायलॉग लिखा हुआ था, यानी बड़ा एक डायलॉग था और वो भूले, लेकिन इसकी वजह से, इस गलती की वजह से जो सीन है वो ख़राब होने की बजाय और नेचुरल और बेहतर हो गया। ये किस्सा उन्होंने बताया कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क की शूटिंग के दौरान घटा था और ये एक इंटरव्यू सीन शूट हो रहा था कटरीना कैफ के साथ और उस दौरान वो डायलॉग जो है वो भूल गए। 4-5 पेज के डायलॉग थे और उन्होंने वो रटे नहीं, उन्होंने समझकर अपने दिमाग में पूरा सीन बनाया और जैसे ही वो उन्होंने शुरू किया बोलना वो भूल गए। और ये अटकने की जो वजह है ये खूबसूरत वजह बन गई, सीन में एक नेचुरल सी फील आई और वो जो था, वो जो पल था, वो जो मोमेंट था, वो उनके किरदार का हिस्सा बन गया। लोगों को ये लगा होगा उसको देखते हुए, उस दृश्य को देखते हुए, नवाज ऐसा कहते हैं कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि सच में मैं वही इंसान हूँ। और एकदम अगर परफेक्ट सी कोई चीज़ हो ना वो थोड़ी सी मैकेनिकल हो जाती है और कई बार लोग छोटी छोटी गलतियों को और इम्परफेक्शन को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि साल 2009 में न्यूयॉर्क रिलीज़ हुई थी, एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी और अगर आपने देखी है ये फिल्म तो अब वो सीन आपको याद आएगा और आपको लगेगा कि अरे सच में ऐसा हुआ था। आपको तो लगा होगा कि ये नेचुरली ये सीन का एक पार्ट है, लेकिन होता है कभी कभी इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती लेकिन खूबसूरत होती हैं। लेकिन एक और यहाँ फैक्टर है कि आप कटरीना कैफ के साथ एक दृश्य कर रहे हों और डायलॉग ना भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है, हो ही सकता है, इसकी संभावना ज़रूर है।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। आइए आज प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी PMRPY के बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत सरकार नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए EPFO में योगदान करती है। इसका मतलब है कि अगर कोई नियोक्ता नए कर्मचारियों को नियुक्त करता है तो सरकार कुछ समय के लिए उनके EPFO योगदान का भुगतान करेगी। इससे नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने में मदद मिलती है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। यह योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मददगार साबित हो रही है। यह योजना उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ रजिस्टर्ड हैं और बशर्ते कर्मचारी 15,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाते हों। 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। व्यवसाय को EPFO के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पास श्रमिक पहचान संख्या यानी LIN होनी चाहिए, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। PMPRY योजना के तहत श्रमिक पहचान संख्या सभी आधिकारिक संचार के लिए प्राथमिक रेफरेंस नंबर के रूप में काम करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठानों के लिए भी कुछ मानदंड हैं, जैसे प्रतिष्ठान को EPF अधिनियम 1952 के तहत EPFO के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक वैध श्रम पहचान संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा पंजीकृत प्रतिष्ठान के पास संगठनात्मक पैन होना चाहिए। कंपनी और व्यवसाय जो भी है उसके पास एक वैध बैंक खाता भी होना चाहिए और उस गेटवे का विवरण होना चाहिए जिसके माध्यम से प्रतिष्ठान को भुगतान किया जाता है। प्यारे श्रोताओं, आज हमने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के विषय में बात की।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: कार्यक्रम 3 का तड़का आप जेनिका के साथ सुन रहे हैं और इस समय बस हम एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। और मैं आपको बताऊं कि ये जो संडे हमने अभी देखा, यानी रविवार की सुबह शाम, जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने बिजनेस किया, जिस तरह से मुनाफे बटोरे, उनके बारे में एकदम हल्की हल्की सी जानकारी आपको देना चाहूंगी। क्रिस्टोफर नोलन की नई रिलीज द ओडिसी ने रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर कहर मचाया और वहीं अजय देवगन स्टारर कॉमेडी धमाल 4 ने भी धमाकेदार कमाई की है। अल्फा और वेलकम टू द जंगल, ये जो दो फिल्में रही, इनकी कमाई में वैसे थोड़ा सा जो है वो गिराव आने को देखा गया है, थोड़ा सा गिराव आया है। अल्फा की तो अगर हम बात करें तो फिल्म अब जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लगता नहीं कि बहुत खास बिजनेस ये कर पाएगी। अब आप सबके लिए एक छोटा सा गाना, छोटा सा म्यूजिकल अंतराल, उसके बाद आप सुनेंगे विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित एक विशेष कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख

0: वालों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, असुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के 4 पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो 5 पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के 5 पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं।
2: और इतनी ही सुंदरता से वे पानी

0: में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
4: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
2: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
5: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
6: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
5: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
5: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
6: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी

0: शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
2: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
2: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
4: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
5: गाड़ी में बैठ कर
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
5: पास जा रहा है
6: सिद्धार्थ ने बताया
5: होगा कैसे।
6: देवदत्त तो कह रहा है।
2: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
8: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: महाराज की जय हो।
12: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम् आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं,

वो तथा विशाल बरगद वृक्ष का एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है।

0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। आशोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: सुरों की महफिल,

हम भी वो घर हैं जो खाली है आपके बिना। बहुत बहुत स्वागत है, छाया लोग सुन रहे हैं आप जैनिका के साथ। और सच में जैसे कि मैंने कहा, आपके बिना हम हैं ही क्या, हम अधूरे हैं। तो इस घर में आपकी जो मौजूदगी है वो सच में बहुत बहुत मायने रखती है। ये जो जुड़ते हैं आप हमारे साथ रोजाना, ये बात सच में बहुत मायने रखती है। तो यूं ही इस घर नुमा हम में आपकी जो उपस्थिति है, जो मौजूदगी है, उसे बनाए रखें। अच्छा, इतने खूबसूरत गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज तो हुआ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज की हमारी ये जो गाड़ी है, म्यूजिकल गाड़ी, ये किस तरफ रुख करने वाली है। तो मैं आपको बताऊं कि आज हम बात करेंगे सभी संगीत प्रेमियों के मन के प्रीतम, संगीतकार प्रीतम के बारे में। सुरों की महफिल सुन रहे हैं आप और चैनिका है आपके साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। पिछले महीने अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट तो नहीं कहेंगे, एक क्रिप्टिक सा पोस्ट डाला, एक बहुत पर्सनल एक संदेश उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी को एक बदलाव देना चाहते हैं और उन्होंने सोचा है, उन्होंने ये तय किया है कि अपनी ज़िंदगी के कुछ साल वो अलग तरीके से जिएंगे। वो ख़ुद को तोहफे में देंगे कुछ ऐसे साल अपने जीवन के जो ये जिस तरह की आपाधापी है, जिस तरह का उनका जो कर्म जीवन है, उससे कुछ अलग हटकर होगा। ऐसे रास्तों पर चलेंगे जो अभी तक उनके लिए अनएक्सप्लोर

और हैं। मेन स्ट्रीम रश से दूर जाना चाह रहे हैं प्रीतम, और सबने कहा कि जिस तरह से अरिजीत सिंह ने अनाउंस किया है कि वो भी अब मेन स्ट्रीम फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे, प्लेबैक नहीं करेंगे, तो क्या उसी दिशा में प्रीतम भी आगे बढ़ रहे हैं? जो भी हो, जो भी डिसीजन लिया है, ये कहते ना कि एक क्रिएटिव फ्रीडम तो होती है कलाकारों की, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से वो रचना करते हैं, गाते हैं, संगीत रचते हैं, नृत्य करते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, लेकिन जो भी हो, उनका जो वजूद है हमारे साथ, उनकी जो प्रेजेंस है, वो उनके कृतियों के माध्यम से हमेशा बनी रहती है। आज कल बहुत लोग हैं ऐसे आज जो हमारे बीच जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो आर्ट वर्क है, उनकी जो रचनाएं हैं, वो अब भी हमसे किस तरह जुड़ी हुई हैं हम जानते हैं। जब जब रेडियो सुनते हैं तो इस बात को हम मानते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में चलिए ना सेलिब्रेट करते हैं हम सब के बेहद बेहद पसंदीदा संगीतकार प्रीतम को, उनकी फिल्मों के गीत, उनके द्वारा संगीतबद्ध कुछ बेमिसाल गाने मैं आपको आज सुनवाऊंगी। सबसे पहले ये वाला जो गीत था मोहित चौहान, निकिता गांधी की आवाज में। आपको बता दूं कि फिल्म का नाम जब हैरी मेट सेजल था, और हमने ये जो फिल्म है ये शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंसेस के लिए याद रखी है। मुझे पता है इम्तियाज अली की फिल्म थी। प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल ने गाने लिखे थे इस फिल्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। के का ये गीत सुनिए और उसके बाद मैं लौटूंगी। सुन रहे हैं आप सुरू की महफिल चैनिका के साथ।

पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी लाइव इन अ मेट्रो, और केके की आवाज में हमने गीत सुना और हम चले गए उस दौर में। 2007 की बात है जब फिल्म के प्रमोशन के लिए प्रीतम और उनका जो बैंड है मुंबई, कोलकाता, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, हर शहर में वो घूम रहे थे, टूर कर रहे थे और इस फिल्म के संगीत का प्रचार कर रहे थे। उस दौर में वाकई में जो फिल्म म्यूजिक की प्रमोशन की जहां तक बात है वो बहुत बड़े पैमाने पर की जाती, और प्रीतम ने इसका जिक्र खुद अपने एक साक्षात्कार में किया था कि किस तरह से फिल्म का जो म्यूजिक है उन्होंने प्रमोट किया। एक महीना पहले से ये सब चलता रहा, और कहना ही क्या, फिल्म जैसी नायाब एक फिल्म जहाँ पर स्टेलर स्टारकास्ट जो थी फिल्म की, उसके साथ ही अगर हम कहें एक और हीरो फिल्म का किसी को अगर हम बताएं तो वो था फिल्म का म्यूजिक। और अनुराग वासु के साथ यहाँ पर जो जुगलबंदी है प्रीतम की, इसके बारे में दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगी। शुरुआत उनकी एक साथ कैसी हुई ये मैं बताना चाहूंगी। तो 2000 के दशक की शुरुआत से एडवर्टाइजमेंट्स और टीवी की दुनिया में वो साथ काम करने लगे थे, लेकिन साथ में समाव फिल्म नहीं मिल पा रही थी उनको। और 2003 में अनुराग बासु ने साया की फिल्म, साया आपको याद होगी, लेकिन महेश भट्ट, मुकेश भट्ट यानी विशेष फिल्म्स को वो कन्विंस नहीं कर पाए कि इस फिल्म के लिए प्रीतम को वो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ले लें, क्योंकि तब तक कोई भी सोलो एल्बम नहीं आई थी ना प्रीतम की ऐसी जो काफ़ी हिट रही हो। और 2002 से प्रीतम ने सक्सेस का जो स्वाद है वो चखना शुरू किया, और ये फिल्म थी मेरे यार की शादी है। और उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, लेकिन ये फिल्म भी सोलो फिल्म नहीं थी। जीत गांगुली के साथ, जीत प्रीतम के नाम से दोनों मिलकर संगीत रचते थे, तो उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म ये थी मेरे यार की शादी है। लेकिन साथ में फिर कैसे आए ये लाइफ इन अ मेट्रो तो 2007 की फिल्म है, और दोनों का एक साथ आना जो है वो एकदम कहते हैं ना कि कमाल ही हो गया जब विशेष फिल्म्स नहीं 2006 में गैंगस्टर के लिए प्रीतम को साइन किया अनुराग बासु के साथ। और गैंगस्टर की जब बात हुई है तो फिल्म का एक गाना जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत बहुत पसंद है वो गाना मैं आपको सुनवाना चाहूँगी। सारे के सारे गाने सुपर हिट थे लेकिन ये गाना अभिजीत सिंह की आवाज़ में एक अलग ही फील आपको देगा।

भैया, प्रीतम और अनुराग बासु के साथ में पहली फिल्म थी 2006 की गैंगस्टर, और फिर एक के बाद एक दोनों ने साथ मिलकर ढेर सारी फिल्मों पर काम किया।

लेकिन अगर हम फिल्मों में उनकी एकदम शुरुआत की बात करें तब तो एक अलग ही कहानी सामने आएगी। हमारे शहर कोलकाता में जन्मे प्रीतम और जियोलॉजी के स्टूडेंट हुआ करते थे और वो सोच रहे थे कि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया जाए। तब उनको पता चला FTII के बारे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, वो भी एक बुकलेट से जो उन्होंने यूं ही चलते फिरते कॉलेज स्ट्रीट में उठा लिया था। वो बुकलेट के पन्ने पलटते रहे और उनको ये FTII का ये उनको एक फ्लायर दिखा। जब उनको लगा कि फिर अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, उन्होंने अप्लाई किया एक कोर्स के लिए जो था साउंड रिकॉर्डिंग एंड इंजीनियरिंग FTII में। और ये 3 साल उनकी ज़िंदगी को एकदम बदल देने वाले थे। वो कहते हैं कि इन 3 सालों में मुझे हर किस्म की इंटरनेशनल फिल्म देखने का मौका मिला। एवरी डे, हर रोज़ मैंने नई नई फिल्में देखी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और इससे पहले तो मैं केवल सत्यजीत रे की फिल्मों से वाकिफ था अपने देश की अगर मैं बात करूं, और बंगाल का कनेक्ट ऑब्वियसली बहुत आपको एक रिच एक्सपोजर देता है। हमारे यहाँ कमी थोड़ी है हीरों की, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, कितने सारे महान महान निर्देशक फिल्म मेकर्स हमारी धरती ने दिए हैं पूरी दुनिया को। लेकिन FTII में जाके अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का जो एक विंडो खुला प्रीतम के लिए, उनकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली और वहीं से फिर उनका रुख हो गया संगीत निर्देशन की ओर। पहले एड फिल्म्स, कमर्शियल्स, टेलीविजन, और उसके बाद फिर फिल्मों में। क्या बड़ा नाम कमाया आपने।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। सुरों की महफिल। सुन रहे हैं आज हम प्रीतम के कुछ बेहतरीन नगमे, हिंदी फिल्मों के बहुत ही नामचीन संगीत निर्देशक जिनका रिश्ता है हमारी धरती से, कोलकाता शहर के रहने वाले और अब जाकर राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नाम इन्होंने कमाया है, और इनके गीतों के बगैर हिंदी फिल्मों के बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एम जी श्री कुमार और श्रेया घोषाल की आवाज में भूल भुलैया का ये गीत मैंने आपको सुनवाया। आइकॉनिक गाना है, न जाने कितने इस गाने के वर्जन्स हुए, जितनी बार ये फिल्म बनी, पार्ट टू, पार्ट थ्री, हर बार अलग तरीके से इस गाने को पेश किया गया। न जाने कितने लोगों ने रील्स बनाई इस गीत पर, वो नाचे, इसको अपने तरीके से गाया। गाना सच में अपने आप में आइकॉनिक है और ये बताता है कि किस तरह प्रीतम जो है वो वर्सेटाइल हैं, इतने वर्सेटाइल कंपोजर हैं, हर किस्म

गाने यूं ही बस अनायास ही बना लेते हैं। वैसे हम फिल्म मेकर्स की बात कर रहे थे, अनुराग बासु के साथ जिस तरह का उनका रिश्ता रहा है, बहुत ही बेजोड़ कमाल की उनकी जोड़ी, अच्छी अच्छी फिल्में साथ में उन्होंने बनाई हैं। इम्तियाज़ अली का भी नाम हमारे जहन में आता है। और इसके अलावा अगर मैं एक और फिल्मकार की बात करूं तो करण जौहर का जिक्र यहाँ ज़रूर होना चाहिए। उनके निर्देशन में ऐ दिल है मुश्किल जो 2016 में रिलीज़ हुई, और उसके बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो 2023 में रिलीज़ हुई, इन दोनों फिल्मों के लिए प्रीतम ने संगीत रचा था। और इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बहुत सारी फिल्मों के लिए प्रीतम ने म्यूजिक कंपोज किया है, मसलन ब्रह्मास्त्र, उसकी अगर हम बात करें आयन मुखर्जी की फिल्म के सारे गाने एकदम सुपरहिट। तो एक बार प्रीतम ने बताया था कि सबसे आसान अगर किसी के साथ काम करना है तो वो है करण जौहर, वो है ईजीएस्ट पर्सन जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई एक धुन सुनते हैं और वो पसंद आ जाती है उनको, तो वो लॉक हो जाती है। एक बार एक धुन सुनकर अगर दिल में बैठ गई तो वो लॉक हो गई। और ऐ दिल है मुश्किल के बारे में उन्होंने बताया था कि स्क्रिप्ट जब सुनी प्रीतम ने, उसके बाद 5 धुनें सुनाई थी करण जौहर को, जिनमें से उन्होंने इंस्टेंटली 3 गाने जो हैं वो फाइनल कर दिए थे, चन्ना मेरिया, बुलिया और एक मैं अभी आपको जो गाना सुनवाऊंगी, बताऊंगी नहीं कौन सा वाला गाना, ये वाला गाना भी एकदम से फाइनल कर दिया था करण जौहर ने और फिल्म में यूज़ भी हुआ। चलिए सुनते हैं कौन सा ये गाना है, और इसके बाद एक और गीत रॉकी और रानी का, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। तो चलते हैं बैक टू बैक दो गाने सुनते हैं, ऐ दिल है मुश्किल और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। आप लोग जुड़े हुए हैं एफएम रेनबो कोलकाता पर, सुन रहे हैं चैनिका को, सुरों की महफिल लेकर आई है आज।

सुन रहे हैं आप छाए लोग सुरों की महफिल चैनिका के साथ, और बात हो रही है आज संगीतकार प्रीतम की। और मैं अभी मुझे ध्यान आया, एक बड़ा ही यूनिक सा

फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, साल 2022 की अगर हम बात करें तो इस साल हिंदी फिल्म म्यूजिक का जो मार्केट है वो थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन प्रीतम ने उस साल दो हिट्स दी थी, एक तो लाल सिंह चड्ढा और दूसरी थी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन। अद्वैत चंदन की लाल सिंह चड्ढा चली नहीं एकदम बॉक्स ऑफिस पर हम जानते हैं, लेकिन इसके गाने कमाल के बनाए प्रीतम ने और साथ में थे उनके अमिताभ भट्टाचार्य। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन के लिरिसिस्ट भी थे अमिताभ भट्टाचार्य, और ये कमाल की बात है कि दो हिट्स इन्होंने मिलकर दी जबकि बाकी लोगों ने उस साल कुछ खास कमाल नहीं किया अगर हम हिंदी फिल्म म्यूजिक फ्रेटर्निटी की बात करें। और जहां तक सवाल है लाल सिंह चड्ढा के गानों की, तो आमिर खान को हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो कहलाए जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो म्यूज़िक के बारे में भी उनकी इस तरह की राय होती है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते, बहुत जल्दी खुश नहीं होते, बहुत जल्दी ज़ीरो इन नहीं करते। तो हज़ार से भी अधिक वर्जन्स कंपोज किए थे लाल सिंह चड्ढा के गीतों के लिए प्रीतम ने, जो लाल के कैरेक्टर से शायद थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए हों, लेकिन बाद में ये प्लानिंग थी कि ये गाने ज़्यादा ऑडियो फ्रेंडली हैं फिल्म फ्रेंडली होने के बजाय, तो आमिर खान ने कहा था जब फिल्म की OTT रिलीज़ होगी तब इन गानों को भी साथ में रिलीज़ किया जाएगा। और इनमें सबसे फेवरेट जो गाना है प्रीतम का वो है तेरे हवाले, और ये गाना जब वो कंपोज कर रहे थे तो उनके मन में उन्होंने सोचा था कि गुरबानी जैसा एक वो गीत बनाना चाहते हैं, जो जिस तरह से जो पंजाबी वेडिंग्स होती हैं और गुरुद्वारे में होती हैं गुरबानी वहाँ पर सुनाई देती है, एक अच्छा सा माहौल, खूबसूरत सा माहौल बनता है, तो उसको ध्यान में रखकर ये वाला गाना उन्होंने कंपोज किया था। चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में, ओनली फ्रॉम लाल सिंह चड्ढा।

सुरों की महफिल में आज प्रीतम की कॉम्पोजिशंस के साथ हमारी घंटे भर की हसीन मुलाकात रही। और अब समय हो चला है कि मैं आपसे कहूं टाटा बाय बाय। पहला घंटा हम यहीं समेटेंगे छायालोक का, और दूसरे घंटे में आपसे मिलने आएगी पूनम, उसके साथ जरूर रहिएगा। फिलहाल चलते चलते होमी अज्जानिया की कॉकटेल से आपके लिए ये गाना लेकर आई हूं, अंतिम गाना आज का। आवाज सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह की, इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था, और संगीतकार प्रीतम। सुनते रहें, साथ रहें FM Rainbow कोलकाता।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दिल की किताब में नाम था तुम्हारा, हर एक सांस में पैगाम था तुम्हारा। तुम साथ हो तो दुनिया अपनी लगती है, वरना हर एक लम्हा सूना लगता है। 8:09 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

गीतकार हैं नवाब आरजू और संगीतकार हैं अनु मलिक, आवाजें कुमार शानू और अलका याग्निक, और फिल्म का नाम आप सब तो समझ ही गए होंगे। अभी तक आपने दो गाने सुने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाजीगर फिल्म से, और दोनों ही फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी। जी हाँ, ये जोड़ी हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक, लोकप्रिय और कमाल की रोमांटिक जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन्होंने जब भी पर्दे पर एक साथ कदम रखा, दर्शकों के दिलों पर राज किया। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री केवल रोमांटिक नहीं बल्कि दोस्ती, नोकझोंक और गहरे जज्बातों का एक बेहतरीन मिश्रण होती है। और भी बातें हैं, साझा करूंगी, जो इसी जोड़ी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए, और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए, ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: आठ बजकर 27 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग, और आज मैं बातें कर रही हूं शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी के बारे में। इस जोड़ी की सबसे खास बात यह है कि इनकी इनके बीच जो नेचुरल केमिस्ट्री दिखती है ना, बस वो कुछ ऐसी है कि दर्शक जब वो देखते हैं तो वो ये पाते हैं कि ये वो केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती है कि बस वो खुद को उस किरदार में डुबो देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किरदार वो खुद ही जी रहे हैं। अब बात चाहे वो प्यार की हो या फिर तकरार की, दोनों का अंदाज बेहद रियल लगता है। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथियों ही बने रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

8:42। काजोल और शाहरुख की फिल्मों में अक्सर एक नोक झोंक भरी दोस्ती देखने को मिलती है, जैसे कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर कुछ कुछ होता है में। काजोल का बिंदास और एनर्जेटिक अंदाज और शाहरुख का चार्म एक दूसरे को पूरा करता है। फिलहाल 8:43, बातें और भी है साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107 आगे आप सब जानते हैं।

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ये फिल्म यानी कि दिलवाले, जिस फिल्म का भी अभी आपने ये सुना है, ये जोड़ी बहुत लंबे समय के बाद पर्दे पर लौट कर आई एक साथ। और इस फिल्म में पुराने ज़माने का रोमांस, एक्शन और कॉमेडी का तड़का देखने को मिला। और ये गाना कितना फेमस हुआ मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल 8:49 और अगला नगमा तैयार आप सब तक पहुंचने के लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

वैसे तो ये गाना है रब ने बना दी जोड़ी से, और इसमें काजोल तो नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन बात क्या हुई कि आदित्य चोपड़ा ने काजोल से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस ज़रूर दें, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि ये जो जोड़ी है ना शाहरुख खान और काजोल की, ये जिस फिल्म में आ जाए बस उस फिल्म को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसीलिए मैंने ये गाना आप सब तक पहुँचाया। वैसे इस जोड़ी की सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है कि पर्दे के पीछे भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके आपस का आत्मविश्वास और एक दूसरे की एक्टिंग को सपोर्ट करना उन्हें एक अनोखी जोड़ी बनाता है। इसीलिए जब भी वो पर्दे पर आते हैं ना, दर्शक उन्हें सिर्फ एक्टर के रूप में नहीं बल्कि अपने प्यार और दोस्ती के प्रतीक के रूप में देखते हैं, और यही कारण है कि इस जोड़ी को सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। फिलहाल एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:57 और पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: তুমি শুনছো বাংলা ও হিন্দি গানের কাউন্টডাউন শো রেনবো টপ 20 only on 107 FM রেনবো টপ 20

0: Top 20. Top 20. Song number 9. Song number 9.
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह.
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिल फरेब.

0: Yes! We killed it!
1: अगले क्या ट्रोल हो जाएंगे?
2: Yeah,
1: not at all.
0: डीनो डाल दे, ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

वक्त छवि थेके आशा भोसलेर कण्ठे शुनछिलेन गानटी। एबारे जे गानटी शोनाबो सेटिर शिल्पी मन्ना दे, छवि आनंद।